0: ए माइली, आएन र हामी बस्ने ठाउँमा भयो। मलाई त मोटर लागेर बान्ता गर्दा गर्दा पेटको आन्द्रा पनि चुडिएर त्यस्तै भइसक्यो।
1: मलाई पनि टाउको दुखेर खुट्टा जस्तो भएको छ।
0: ओहो, कस्तो आत्तिएको थियो म त, अब आइहाल्यो। यति लामो बाटो कहिल्यै नहिँडेकाले यस्तो भएको। अब गएर एकछिन आराम गरेर नुहाइ धुवाइ गरेपछि सब ठिक हुन्छ।
2: होइन ए माइली, चारैतिर घरै घर, मोटरै मोटर, खुट्टा टेक्ने खाली ठाउँ पनि देखिन्न। खै कहाँ हुन्छ त पँदैन यहाँ।
0: हरे, यो प्याउलीको बुद्धि! सहर बजारमा पनि कहीँ पँदेर हुन्छ त? यहाँ त सबैको घरभित्रै धारो हुन्छ नि। हिँड हिँड, तिमीहरू जुन कोठामा बस्छौ नि हो त्यही कोठाभित्रै नुहाउने ठाउँ छ।
1: हो त नि, हामीले त सच्चै केही देखेकै छैनौँ।
0: सुन, अब हामी बस्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। हामीलाई विदेशमा लगेर काममा लगाइदिने, जहाजको टिकट मिलाइदिने एकजना दिदी हुनुहुन्छ। हुन त उहाँ धेरै जसो हिन्दी बोल्नुहुन्छ, तैपनि हामी नेपालीको सङ्गत गर्दा गर्दा अलिअलि नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ। पहिले हामी गएर उहाँलाई भेटौँ, राम्रोसँग नमस्कार गर्नु, अनि उहाँले तिमीहरू राजी खुसीले आएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। हो, हाम्रै राजी खुसीले आएका हौ भनेर भन्नुपर्छ है।
2: किन त्यस्तो भन्नुपर्ने हो नि मैले?
0: काम गर्न जाने मान्छे खुसी छैन भने उहाँले त्यस्तोलाई काममा लगाइदिनुहुन्न क्या? किनभने राजी खुसी नभइकन आएको मान्छेले काम पनि त राम्रोसँग गर्दैन नि, हो कि होइन भन् त?
2: त्यो त हो।
0: ल, यही हो हामी बस्ने घर।
2: ए माइली, कति ठुलो घर हो कि, हामी टेक्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने जस्तो, कस्तो सजिलो छ।
0: चुप लाग्। खै दिदी पनि कता जानुभएछ? मेम साहब, ओ मेम साहब,
3: कौन है? अरे माइली, तुम?
0: नमस्ते मेम साहब।
3: नमस्ते, नमस्ते।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: अच्छा, खुश रहो बच्ची, हो खुश रहो।
3: हाँ तो माइली, कैसी हो तुम्हारा? बहुत दिनों लगा दिया आने में।
0: एकदम ठीक ठाक हूँ मैम साहब, लेकिन क्या करूँ, दूर का मामला है ना। ऐसा वैसा करते करते इतना दिन बीत गया, आखिर आ तो गई।
3: ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्ची हो, तुम लोग काम करने आये हो ना? मेरा मतलब है कि तुम्हें हर काम करना आया कुछ हो है? हाँ, अच्छा, तो एकदम ठीक है। तो तुम्हें हर अपना खुशी राजी से यहाँ आये को हो या कोई तुम लोगों को फकाई फुकाई करके ले आये को हो?
0: होइन होइन, हामी त एकदमै आफ्नै खुसीले आएको हो।
1: त्यही त नि, हामीले नै माइलीलाई बिन्ती गरेर आएको।
3: त ठिक छ माइली, ए बच्ची लोगोको भोक लगी होगी और थक भी गई होगी, इसीलिए इन लोगों को अंदर भेज दो, कुछ देर ये लोग भी आराम करेंगे।
0: अच्छा मैम साहब, हरिकला त्यावली फिर भित्र जाओ।
2: हुन्छ। मलाई त कस्तो सुत्न पायो त्यो जस्तै भइरहेछ।
0: ल, यही कोठामा बस, लुगा सुगा फेर, अनि दिसा पिसाब गर्न मन लागे टोइलेट यहाँ छ, नुहाइ धुवाइ गर्न मन लागे बाथरुम यहाँ छ, बुझिस्?
1: तिमीलाई थकाइ लागेको छैन र माइली?
0: अनि टिकटको लागि पनि त व्यवस्था मिलाउन पर्यो नि। तिमीहरू आराम गर्दै गर, म एकैछिन पछि आउँछु।
2: ए हरिकला, यो इन्डिया भन्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ भने अझ विदेश भन्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो होला नि?
1: त्यही त प्याउली, तर मलाई त घरको पो चिन्ता लाग्न थालेको छ। म हिँडेपछि आमा कति आँटिनु भएको होला, भाइलाई त्यस्तै भएको होला।
2: तेरो त बरु आमा आत्तिए पनि सम्झाइ बुझाइ गर्ने भाइ छ, मेरो त झन् बिचरा एक्लो भा, कस्तो भयो होला भन् त?
1: हुन त हो नि, तर जे हुन्छ हुन्छ भनेर हिँडेपछि पिर गरेर मात्र के गर्ने, जे पर्छ त्यही टर्छ। ल एकछिन आराम गरौँ, मलाई असाध्यै टाउको दुखेछ, कुरा भनेको पछि गर्दै गरौँ।
0: मेम साहब,
3: ओ माइली, आओ अच्छा मेरे पास बैठो।
0: तो मेम साहब कैसे लगा मेरे साथ?
3: बिल्कुल गुड़िया जैसे। अरे माइली, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। हा? तेरे चॉइस में कोई भी खोट नहीं होती है, और फिर तुम ही तो मेरे खास आदमी हो जो मेरे धंधा को चकाचक बना देती हो।
0: अरे मेम साहब, वो तो सिर्फ यही की मेरी ही वजह से आपका धंधा बढ़ रहा है, और आपकी कृपा से भी तो मेरा गुजरा चल रहा है ना।
3: हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम। तब बोलो, अब की बार क्या रुपया चाहिए तुम्हें?
0: आपसे भी मैं कोई मोल मोलाई करूँगी क्या? आप खुद जानती हैं।
3: अच्छा ठीक है, लड़की भी बहुत अच्छी है, इस बार मैं तुम्हें 1.5 लाख दूंगी, ठीक है ना?
0: ठीक है ललिता।
3: अच्छा तो आज तो बैठोगी ना तुम यहाँ पे?
0: नहीं मैम साहब, मैं कोई और होटल में बैठूंगी, लेकिन पैसा मैं अभी नहीं लेंगी। मैं होटल में पहुंचकर फोन करूंगी, उसी एड्रेस पर कल सुबह पैसा भेज दीजिएगा।
3: अच्छा अच्छा, तुम जैसे चाहोगी ठीक वैसा ही होगा।
0: अच्छा है मैम साहब, मैं चलती हूँ। नमस्ते।
3: नमस्ते नमस्ते, अमाली मत भूलना, आते रहना।
5: राम राम भाई।
3: अरे राम राम लल्लन जी, कैसे हो?
5: अरे अच्छे भले चंगे ही है। अरे वही पुराना माल है कि नए नए भी लाए हो?
3: अरे लल्लन जी, ये माधुरी के कोठी है। हाँ माधुरी, ग्राहकों के संतुष्ट दिलाने ये हमारा फर्ज बनता है, और आज एक नहीं पूरी 2-2 नए लड़कियाँ आए हैं।
5: अच्छा अच्छा, रेट तो बताइए नए नए स्वाद का।
3: आज का रेट कुछ महंगा है, 5,000 रुपया दोगे तो चलेगा।
5: 5,000 रुपया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पहले माल तो दिखाओ।
3: चलिए, इस बार तो आप तुम लड़की देखेंगे ना, देखते ही रह जाएंगे। हाँ
5: देखिए आपके बात में कितना दम है।
3: अरे दरवाजा खोलो।
5: वाह भाई जी वाह, माल में तो कोई कमी नहीं है, इनमें से एक को मेरे साथ भेज दोगे?
3: आ लड़की, तुम जरा इधर आओ।
6: हजू क्यों बन गए?
3: समझा नहीं है तिमी ओ यू मान्छे सित जाने हो? हाँ
6: वहाँ सँग जाने रे, किन कहाँ जाने हो र?
3: अरे पगली, वहाँ सँग रात बिताउन जाने हो, किन जाने भनेछ?
6: हाँ के भन्नुभएको तपाईँले? माइली खोइ।
3: अरे ज्यादा मत बोल्ना, हामी त ठिक भनेछु, तुम्हारा माइली नहीं है, ऊ त अब आउँदैन।

0: 죽겠으니 뭐야, 이 사람이냐, 아주.
1: 말랄게. 찔러나 번 걸어, 와. 이러나 도나, 내 찔러가, 야, 앞에. 저러, 인기 사, 저러.
0: 나이, 디디. 빈티 잘쓰다 벌로스. 하비 마티 너야, 거는, 디디. 하비 마도, 이수 까무는 사비네, 디디. 하미라도 말이지, 미래스만 녹이 러가야지, 주머니를 내야, 기원해. 이슬이 빈티 사, 디디. 하미라, 하루 걸어, 자르, 디디, 수다.
1: 랄런지? जरा इसे पकड़िए हाँ चल जल्दी चले यहाँ से हाँ
2: अरे यार डार्लिंग आओ आज की रात रंगीन बनाए चलो डार्लिंग
0: ना
2: चलो चलो
0: ना
2: अरे पैसे दिए पैसे दिए बस चल
1: तुम भी कान खोल कर सुन तेरे पास भी एक ग्राहक आ रहा है उसे खुश करना समझी और यहाँ रोना धोना सब बंद करना और अपने धंधा को संभाल लेना
3: हे भगवान कुन जुनीको पाको सजाय दिँदैछु पल्लु के सोचेर आएको थिए कस्तो कस्तो सपना देखेको थिए तर आज सब चकना चुर भयो यो नर्कबाट छुटकारा दिलाइदेऊ अर्काको ललैमा लागेर घर छोड्दा आज यो अवस्था आइपुग्यो एउटा साथी भनेर विश्वास गर्दा आज हामी माथि यस्तो विश्वासघात पख माइली त पनि त्यस्तै बच्न त के पाउलिस र तर यहाँबाट कसरी निस्कने न त साथमा पैसा छ न त कोही चिने जानेको मान्छे नै छ बिचरी